0: जो अपने ननु से बाण चला रहा है ना, वो मुझ में काम नहीं करेगा। अपनी लिमिट में रह। और हाँ, ये जो रॉन्ग आइडियाज तेरे दिमाग में है ना, उन्हें निकाल दे।
1: तुझे क्यों लगता है तेरे बारे में रॉन्ग आइडियाज ही आएंगे? राइट आइडियाज भी आ सकते हैं ना।

0: देखना मैं एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा, सारी दुनिया मेरे गाने सुनेगी, हर जगह मेरे होर्डिंग्स लगे।
1: फिर तो तू मुझे भूल जाएगा ना?
0: कभी नहीं, तेरा और मेरा साथ सदियों तक का है।
1: प्रॉमिस
0: प्रॉमिस।

0: ओ ये नन दोगाजी
1: तिरेन खबक केलोल खबन के अनि गा त कटु बाजी छ यन सुच जापान कोरे आइन माले चु याङला तामाङ युल संगेना याङला तामाङ युल सारी तुन म कटु गन छ आइन याङला तामाङ गोइलो कन दोला ना बर चु याङला तामाङ गोइलो कन गो धोलो गाय ग्याम रे खाना खानन एदंगे चु लुसि बाबु चु कन छ बर ढंगार एदेन गा नला धिमरे नि दोला।

0: minute. Just a minute. We will return back. Return back.
1: सेवा बुक स्टोर चौतारा पाँच सिन्धुपाल्चोक
2: हाम्रा सेवाहरू
1: स्टेसनरीका सम्पूर्ण सामानहरू
2: फोटोकपी प्रिन्ट
1: कलर प्रिन्ट
2: पीवीसी आईडी कार्ड
1: सबै प्रकारका खेलकुद

Helembu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: तिमीलाई छोड जानु मेरो रहर होइन, बाध्यता हो। म जहाँ गए तपाईँ मेरो मन फन्किनु।
1: रोबिन जी, मजबूरी का नाम देकर आप मुझे छोड़कर जा रहे हो ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी पूरी जिंदगी आपका इंतजार करूंगी।
0: मैं देखो चिन्ह आप।

0: Elambu FM 89.6 MHz.
1: अब रंग थेसुमुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माइफे नला विश्वासी समक बसुगो
2: कदेला समस्या रङला समस्या दोबरी थपिन्छुगो जयमसी तथा नमस्कार लासु फ्याफुला कार्यक्रम स्पार्क माई थे तथा जीवनला क्षण गदेला श्रृङ्खलाला अङ्क 28 राङनी स्वागत मुला ङ बियोग तामाङ जब से गदे रङला ङच्छ अनुसार आता मुला लानन राङमा मिग देसे स्यान्दोदा दोष पिनबरी सेमला मुला जब थेनी गदे बोमोरे मुला थेनी गदेसे स्यान्दोदा बोमोरे बरे दोष पिनमुला जब हलाइसे राङदा घृणाला क्षम व्यवहारला मुला जब थेनी गदेसे रङप्रति दोष थन मुला थेनी गदेला समस्या रङला समस्या दोबरी थपिन्छुगो मुख्यतम थेनी गदेसे रङदा लब व्यवहार प्रति रङ हरङला सी प्रतिक्रिया पिन्छुला विवाहिन्बा रङला विचारिन भावनाला जिम्मेवारी रङनुन किन्छुगो थेन्दे जब लानन रङदेन बोमोरे मुला रङला लुइरी ताजिब हजिबै घटनाला कारण से लामा थेनी गदे बोमोरे बा मुबा बिसी विचार लस्युगो थे बोमदा रङला समस्या आइन्बा रङला समस्याला रूपी स्वीकार लस्युगो जब रङ बोमोरेसे प्रतिक्रिया पिनबरी सेम लसिमुला थेन्दे थेनी गदेसे रङदा हराङ बा व्यवहार लजी बिबा तामसे लामा बोमेरेसे रङ थेनी गदे ग्याम थारेङ जे मुसुला दारेम रङ थेनी गदेला समस्या रङ छाम नन थोसी भ्रमु ब्रस्युबा मुला थेरङ थालासुगो बरु थेनी गदेला बोमरे प्रेम देन दयासे जवाब पिनगो तिग्दा विषम रङ थेरङ बन मुस्युला रोमी बार देल दुई जम्बोलिङला मिगदेला रङबा बानी बेह थोसी थप्राउ बरु एनी गदेसे रङला सेम परमेश्वर प्रति दोषी छार मि दोगो थेरङला सी विषम जे एनी गदेसे परमेश्वरला सेमला ताम गोबरी खम्ला ओछे खजीबा ताम जब गदे देन परमेश्वर दा सेमनी वा ओछे सत्यहीन बा बिसी था याङखला स्यान्दो दा रङ हाला मुसुल थेन्दे रङ हरङ महसुस लसुला बिसी निर्धारण लबी थपिन्छुगो चु थेनी गदेसे रङदा हरङ बा व्यवहार लामुला विवाद ताम्री आधारित मुला बरु रङला सेमला विचार गरेदा परमेश्वर से रङला बारी तिगा मनसु मुला विवाद ताम्से निर्ता निरन्तित ताबरी पिन्छुगो रङ अद्भुत मुसुला थेन्दे रङ रोल बहुमूल्य सन्तान मुसुला लुइरे ताजीव परिस्थिति कदेला कारण से जब हलाइला दिन खराब तमुला थेन्दे थेसे परमेश्वरलाई वचन ज्ञान सकारात्मक विचार गरे सोचाव लाला लागरी रङला विचार गरे दा हरङलासी नियन्त्रण लसेला बिसी लोप्पा आरि विषम थे बोमो रेसे मुला थेने थेसे थे बोमो स्यन्दो प्रति प्रकट लाला हे थेला समस्या हिन्दा
0: टाइम चेक इट्स 7 PM